सुबह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट बनास्पति सगरी लिख गए हो के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण ना बिनती काल कृपाण ना बिनती ना तो तुमको सब नय कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट फराद हमारे हो। कूट फराद हमारे हो। अनख विधि समझाओ अनख विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

नहीं है जो गुरुमुख प्रवाह से बाबा जी ने महान भक्ति की थी, राज योग भक्ति है, पर ए माया गुरु ना जाए। पर कई माया डंग भी नहीं दी है, माया होई किन्हें वास्ते नागरी है जिन्होंने गुरु बोल जवाब दे दिता। बेचारा ब्राह्मण वापस आया, साहबां दे दरबार च मत्था टेकिया, रो पिया, कह लगा महाराज। हजूर कह लगे सुना मिल गया 500 रुपया। रो के कह लगा महाराज, जे तुहाडा गंगा राम नाल कोई लैण देण नहीं सी तां मैनूं क्यों इतनी दूर भेज। हजूर कह लगे नहीं मिले भाई महाराज, ओह तां अहंकार च बोल। हजूर कह लगे कोई साहब जी चादर दी बुकल मार के बैठे सजाद कढ़िया, इस तरह करके मुठी मीट के जेब च पा ली। कह लगे अगे तां साडा गंगा राम नाल लैण देण सी, गुरु नानक सी सा गंगा राम सिंह वास्ता, जो आप कहना तो अज तू लैण दे कोई ना, जिस तरह बटन उपर कर दई फौरन नेरा हो जाता है। इसे तरह प्यारी सत्संग साहबा ने जिसे ने बख्शन वाला बख्शिश वाला बटन जरा उपर किया, फिर उसे तरह घाटे आखो श्री है। सतगुर से गणत जो रखे हर पलत सब सुसदा गया, नित चाहिया पावे चगू सुते, चखदा चखदा ओ चढ़ पिया, नित उपाव करे माया धर्म कारण, अगला तन भी उड़ गया। क्या ओ खटे क्या ओ खावे, जित अंतर सहसा दुख पिया, निर्वैरा नाल जो वैर रचाए दे, ताप जगते का तिन सिर लिया, उन्हें अगे पिछे तो ही नाही, जिन्हें अंदर निंदा मोहम पिया। हजूर कहते जे ओ सोने नू असलावे ता क्यों देती हो, मालिक दी मेहर ना आवे ता सोना मिट्टी हो जाता, जे बख्शिश का बूरा खुला हो तो मिट्टी सोना, कंगाल हो गया फिर गंगू बन गया, फिर मैं दर बर छोकरा खांदा सोचिया हुण किधर जावां, ख्याल आया मना तो ता गुरु तू अपने आप नू तोड़िया, तू तो गुरु तू बेमुख होया है, पर गुरु बख्शंद है फिर गुरु बोल। गोइंदवाल साहब आ गया, साहबां दे मथे नहीं लगा सीधा लंगर च पहुंच, फिर सेवा शुरू कर 6 महीने फिर सेवा की। साहब जी फिर अज लंगर आ गए, ओ गंगा राम तेनू तो सेठ बनाया सी इसे किस तरह, हुण चरना ते पै के रोण लग गए। ऐ पातशाह तू देवो सब किस दयाधार, हम आकिर्त मैं किरत कर तेरिया दाता नू पा के तेनू भुल गया सा, मैनू बख्श। हजूर कह लगे गंगा राम रो ना, तो 6 महीने मेरे सिखां दी फिर सेवा कीती है, एक बारी फिर मंग लै आखो श्री गुरु कहना चालू कहनी। इधर गंगा राम रोई जाता है ते फुल मंगदा है मेनू फक, आओ करिए अरदास। प्यारी सत्संग गंगा राम ने भी गलती की, केवरी असी भी कर दें तो बख्शन वाला कौन है, धन गुरु अरदास पातशाह जागवी जोत गुरु बैठे हैं। गंगा राम रो के अरदास करता है की आओ आप भी कर लीए अरदास, पहले सेव खोलेगा पिछे सारी

अब गुरु के प्यारे बिठाएगा नहीं। कहने लगा सिखा मेरे घर चंगी चादर भी नहीं, कि तेन बिठावा ते मोढ़े ते ना हजूरिया प्या। सिख ने वह फड़ लिया, कहिंदा यही बिछा दे ये ते बह जाने। सिखा ये परना मैला झूठा है। सिख ने जल मंगवाया, पांच पौड़ियां पांच बारी पहली पौड़ी पढ़ के जल छिणकिया, कहण लगा बैठन योग हो गया। हुण बिठाया ते सात संगत पतीले विच पानी पा के ना पानी, ओ गरीब परिवार ते पीलू अंगूठे नाल पोले कर करके ना पीलू ते आऊं भाई मलागर सिंह नूं फड़ांदा ते मुंह उधर नहीं करदा, शर्म आउंदी है ते पानी दा गलास नाल रखता ते पीलू खवा रहा पीलू ते नाल मुंह उधर करके कहिंदा सिखा जो होगा परवान कर लई, मेरे घर गरीबी बड़ी। हुण खालसा जी आ भी निर्धन नूं पालना जे इतिहास लिखा दो गिलास पानी ते चार पीलू भाई मलागर सिंह ने खाधे, चार पीलू ते पानी दो गिलास पी के ते आवाज दित्ती सिखा मैं तृप्त हो गया। आप सतनाम हुण उह जिहड़ा गरीब सिख सी ना उह सोचदा है कि जां ते सतगुरु नूं शिकायत करेगा जाके ते जां जरूर रौला पाएगा। इत्थे भेजिया प्रशादा की मिलना, ब्याह प्रशादा नहीं मिलिया, ब्याह प्रशादा की मिलना चावल भी नहीं मिले, चावल की मिलने कोई बहे चावल भी नहीं मिले, पीलू मिले। पर हैरान रह गया वो गरीब सिख कि गुरु गोबिंद सिंह दा सिख गल च पला पा के कहिंदा सिखा तेरा नां की है? वो अजे भी डरिया, नां क्यों पुछ रहे हैं, तेरा नां दस्से नहीं। सिखा जो गुरु ने तेनू बख्शिया तू मेरी सेवा की, अरदास करनी तेरी, उहदी अरदास की, सतगुरु इन चढ़ती कला बख्शी। खालसा जी यह भी निर्धन नू पाल कि सवेर दे दवान विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने शिवराम नगर विच स्पैशल भाई मलागर सिंह नू खड़ा करके सारी संगत नू बचन सुनाया कि इस सिख नू राती प्रशादा भी नहीं मिलिया, इस सिख नू राती कोई चावल भी नहीं मिले, पीलू खादे ने पर तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। दूजे बने मसंदा दा नक्शा खिचया कि कई कुछ लोग उहनां नू छकाउंदे सी पर ओ डरावा पांदे सी साडी सेवा ना कीती तुहानू शराब दे देंगे। इहनू पीलू मिले ने पर यह भी तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरी संगत विच इह गल आखी सी धन सिखा धन सिखा तेरी धन कमाई, तेरे वर्गी एहो जी निम्रता एहो जा जरन, धन सिखा तेरी सिखी धन है, धन सिखा ते सिख ने नाल ही वड्याई कोल नहीं रखी, आखिया धन दाता सब तेरी बख्शिश है धन दाता। गुरु आप प्रगट करदा जी एहो जे सिखां दा नक्शा, ए भी निर्धन नूं पालना किसे दी गरीबी नूं औगण नूं जरिया रौला नहीं पाया उहदा वी भला। ए भाई फग्गू गुरु प्यारिओ रुमाल खोलिया अरदास करके सतगुरु कुछ कढ देना तां कि इस गरीब सिख दी वी बीबी दी वी हाजरी लग जे। ते गुरु तेग बहादुर भरे दवान च कहिंदे फिर अगे सुणा, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਾਨਾ ਸੀ ਖਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੀ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਾ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਾ ਕੂੜਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰੁਮਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੱਪ ਮਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਰੱਖਤੀ, ਫੇਰ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕਦੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਰ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ।

0: कोए।
1: आज डट के लोड़े इस प्रचार में बहुत लोड़। आम बंदा कहंदा मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, महाराज कहंदे अवस्था बना हम नहीं चंगे बुरा नहीं, कबीर हम सब ते बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। ये दवाई ते कौड़ी है पर खालो ते बड़ी शांति। अज बहुत लोड़ है प्यार इस प्रचार दी, किसे दे औगण नूं जरना ते कलेश दा समा लंघा रहे। मैनूं याद है आ संत बाबा भूरी वाले है ना, असी बाबा जी दे बचना दी शील्डां वंडदे आ। एक ते आए प्रोग्राम ते ते शील्ड देती ते उते बचन लिखा सी निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। बचन है बाबा नरसिंह जी, निम्रता रखण नाल विपता दा समा टल जांदा है। मैनू पांच महीने बाद मिले ते कहण लगे वो मैनू शील्ड बड़ी कम आई। मैं कहा जी किवें? कहिंदे जिहड़ी मेरी गड्डी ना छोटी जी बस है अपने बहण दी, कहते मैं जिथे अगली सीट से बहना ना वो सामने लाई हुई है। तो कहते इन्नी काम आती है कि कोई गड्डी कोई दूजा बंदा माड़ी ला जाता या कुछ होर गल हो जाती। तो कहते कई बार पहले आ जाता सी गुस्सा, तो कहते फिर वो जो शील्ड पढ़ ली थी ना भी कहते उस वे एक मिनट निम्रता रख ली थी, लड़ाई टल जाती। आखो सतना ओगण जर लिया। एवं नहीं महापुरुषों ने कोई बचन कढ़े होंगे उन्हों की गराई होंगी, गराई भी वो इनू वरतना इहदा लाभ लैना इहदी गहराई च जाना। घर च कोई चांस होवे दूजे दा औगण ही हुंदा ना, उहनू अद्धे मिंट मिंट लई जर जाओ, कई वारी कई कलेश दे टाइम लंघ जाणगे बीत जाणगे। निम्रता रखण नाल विपता दा समां टल जांदा। ना रखो जवाब दे तो हो गया शुरू काम। इह भी निर्धन नूं पालणा भाई अज लोड है, क्यों इस वेले युग जा रहा है फुल फुल पता फुल ईरखा का युग है। तो दवाई कौड़ी है, भावें कोई चप्पा पुड़ी लै जाना, भावें अद्धी पुड़ी लै जाना, पौनी पुड़ी लै जाना, लै के जरूर जाना ताकि संघ च आया किसे थाए आवे। युग है इस वेले आ दिल्ली आपां रकाबगंज गुरुद्वारे तो हाजरी ला के निकले सां, जान ही लगे अगली सीट ते बैठा सी, एक बजुर्ग ने शीशा खड़काया सी, शीशा खोलिया तो दोवें हथ करके उन्हें कहा सी, कहिंदा जी बाणी सारियां मनोकामना पूरियां कर दी। मैं सीट ते बैठे बैठे मैं कहा हां जी कर दी है। कहिंदा जी बाणियां सारी मनोकामना पूरियां कर दी। मैं कहा जी कर दी है। मैनू कहिंदा मैं दो पाठ सुमनी साहब रोज करदा वा किसे बंदे लई कि उन्हूं सड़क ते रुलदा वेखा। कहिंदा रुलेगा ऐस समाज। कई बंदे निर्धन नूं पालना की बाणी भी इस लई कई वारी पढ़दे आ कि दूजा सड़क ते रुलदा वेखा। हुण मैनूं जिहड़ा गड्डी चलाउणे कहिंदा जी चलीए, मैं कहा यार इहने विच फसाता। पहलां कहिंदा मनोकामना पूरियां कर दी, मैं कहा कर दीए। कहिंदा दो पाठ सुमनी साहब दे करदा वा फलाना सड़क ते रुले रुलेगा। मैनू कहिंदे बजुर्ग बड़ा तेज सी, कहिंदे बोलदे नहीं हुण। ऐसा है इहनू की कहांगे ईरखा दा युग। अमरीका असी जिहदे रुके ना घर, हुण जिस गुरुद्वारे नूं पिछे जे अखबारां च पढ़िया तुसीं अग भी लगी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क, उत्थों असीं निकले सां। एक सज्जन ने दास नूं कहा सी घर आओ साडे। मैं उहदा टैलीफोन नंबर एड्रैस लिखण लग पिया, दूर दूर जगह दी भी फोन ते तेरे नाल टाइम सैट कर लैणगे कर लेंगे। ते जिथे रुके सा ना वह मेरी बांह फड़ के लै गया पासे, कहण लगा इहदे कोलों की लिखदे पए से। मैं कहो कहिंदा घर आओ, ते उहदा फोन नंबर एड्रैस लिख रहा सी। मैनूं कहिंदा इहदे घर नहीं जाणा। आखो सतनाम। कहिंदे इहदे घर नहीं जाणा। मैं कहो क्यों? कहिंदा तुहानूं नहीं पता साडे घर पंज पाठ सुमनी साहब दी रोज दी सेंची चलदी पई है कि इह बंदे नूं असीं रोटी तों बुरकी बुरकी तों आतर हुंदिआं वेखी। मैं कहा तेरा भला हो जाए, हुण भावें टेप ही सुण लवे गुस्सा कर ले। हैं जी ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

अमुल अनमोल ते दरगाही बाणी दा कीर्तन अते समाज सुधार जीवन जुगत अते अध्यात्मक विचारां पाई गुर इकबाल सिंह गुरुद्वारा माता कौलां जी वाले तिना दी रचना तो सरवण कर रहे सी। भाई साहब तो गुरु नानक पातशाह जी निष्काम सेवा लै रहे हन। आप संगत दी दित्ती माया रूपी सेवा नाल अमृतसर लुधियाना जलंधर जंडियाला गुरु बरेली ते दिल्ली जमुना पार विधवा बीबियां दे केंद्र चल रहे हन। इस दे नाल ही देहरादून लुधियाना जंडियाला गुरु ते अमृतसर विच हस्पताल दे रूप विच सेवा अते होर 46 जगह धार्मिक ते समाजिक सेवा चल रही हन। हर पल हर घड़ी हर पक्ष तो आप संगत दी असीस की लोड़ है। भाई साहब वालों बेनती है अमृत छको अमृत वेला बनाओ अमृत बाणी नाल जुड़ो।

पर मनन भी कोई करेगा जो मन करके करेगा, मनन वही करेगा जो पिता दे हुक्म नु सुन के समझ के कमाएगा। सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई फिर बेनती करदे हां, सुनना इस करके है समझन वास्ते, समझना इस करके है सीखण वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई जे एक पत्नी पति का हुक्म मनेगी, मनन करेगी मन करके, ते अपने पति दे प्यार दा सुख ले लेगी। लेकिन अवस्था वही है जे अगर पत्नी अपने पति दे हुक्म नु सुनेगी, समझेगी, सिखेगी, मनेगी। जे सिख गुरु दे हुक्म नु मनदा, मनन करदा मन करके, ते सिख गुरु दा प्यार ले लेगा, गुरु सिख दे अंदर वासा कर लेगा, वो गुरसिख होएगा। पर गुरसिख भी गुरु दे हुक्म नु, गुरु दे शब्द नु सुने समझण लई, बाणी दा पाठ करे समझण लई, बाणी सुने समझण लई, समझण लई समझे इस करके सिखण लई, सिखे इस करके मनण लई। आखो वाहिगुरु, सिर्फ पाठ ही ना करे लेकिन पाठ करे समझण लई, समझे इस करके सीखण लई, सीखे इस करके मनण लई। मैं पाठ कर लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु। मैं गुरु का हुक्मनामा सुन लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु।

से बख्शिश भी नहीं। सच है पर मनन का संबंध मन नाल है। जिन्होंने मन करके मनिया, जिन्हों के अंदर मन विच प्रेम सी मनन लई, उन्होंने सुनिया भी मनिया भी, पर एक जुगत नाल मन कीता पाओ। आपो वाहिगुरु सुनिया मनिया मन कीता पाओ। तुसी सुनिया जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ही नहीं, भोग पै जाएगा। आपो वाहिगुरु मनोगे की जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ते मन विच प्रेम रख के मन लिया, फिर तो अंतरगत होता जाएगा। आखो वाहिगुरु मैल खत्म हो जाएगी, निर्मल हो जावांगा। आखो गल मनन दी, अज असी दुखी क्यों हां, सुखदाते दी गल मनदे ही नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे भटकना क्यों है, सुखदाते गुर परमेश्वर की गल वल तो सुनते ही नहीं, सुनते समझते नहीं, समझते मनते नहीं। आखो वाहिगुरु जेड़ा पाठ कर रहे हैं ना, एक मैं बेनती करा, मैं दुखी हां, रोगी हां, मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने मेरी नब्ज फड़ ली, डॉक्टर ने नब्ज फड़ के मैनू मेरी बीमारी दस दिती, एक पर्ची ते मैंने दवाइयां लिख दितियां, दवाई खाण का ढंग दसता सवेरे दुपहरे शामी, नाल दस दिती विधि। तुसी दसो कि मैं पर्ची नू हाथ विच फड़ के पाठ ही करी जावां, कि मैं डॉक्टर की पर्ची का सारा दिन पाठ करता जावा, ते दवाई सवेरे खा दुपहरे खा शामी का, सवेरे खा दुपहरे खा शामी का, लेकिन ना मैं दवाइयां लियावां ते ना मैं खावां, कि मैं उस पर्ची की आरती उतारी जावा, कि मैं उस पर्ची की जोता जगाई जावा, मैं ठीक हो जावांगा। आखो वाहिगुरु समझ की गल ऐसी कि मैं डॉक्टर की गल जिन्हें मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, किसे को समझा, डॉक्टर को समझा या किसे को समझा, फिर देखा मैं दवाई सवेरे शामी किवें खानी, विधि किवें है, परहेज की है। ठीक है मैं डॉक्टर नाल प्यार करांगा, मैं डॉक्टर का सत्कार करांगा, जिसने मेरी बीमारी लभी मेरे मन भी डॉक्टर का सत्कार होएगा, डॉक्टर की याद होएगी, डॉक्टर नाल प्यार होएगा जिसने मेरी बीमारी लभी, लेकिन डॉक्टर भी मेरे से ता प्रसन्न होएगा जेड़ी मैं दवाई लिखी है, ये मरीज खांदा भी है कि नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे अंदर भटकना, असी खिजदे हां, खपदे हां, खिजदे हां, अपने आप नूं चरमी कलाउण वाला भी खिजी जांदा, हाथ विच गुटका फड़ के पाठ करदा फिर भी कल्पी ते खिज जांदा, क्यों? मेरे गुरु वैद ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने इस मनुखता दी जमीर उची करन वास्ते, इस दी तकदीर उची करन वास्ते, इस कराए पे होए नू राहे पाउण वास्ते, किरत कर्म के विछड़े नू मुड़ के मिलाउण वास्ते, इस दा सच्चा ते सुच्चा आचरण करन लई, इस दे विच नेकी दे गुण भरन वास्ते, परपकारी मुजस्मा बनाउण वास्ते, सरबत दे भले लई इस दे अंदर सोच भरन वास्ते, मेरे गुरु परमेश्वर पूरे वैद ने डायग्नोज किया, इसकी बीमारी दसी ते नाल तुरदरगाही बाणी दे दिती। आखो वाहिगुरु तुरदरगाही बाणी, इस बाणी नू सुनी, इस बाणी नू पढ़ी, लेकिन समझन वास्ते समझी, इस करके सिखन वास्ते सिखी, इस करके मनन वास्ते, जे परमेश्वर दी बाणी ए जड़ी औखत है तेरी जमीर नू उच्चा करन वास्ते, सच्चा ते सुच्चा आचरण बनाउण लई, तेरे विछड़े होए नू मुड़ के प्रभु मिलाउण लई, तेरा किरदार उच्चा करन वास्ते, तेरा आचार उच्चा करन वास्ते, जे अगर तू परमेश्वर दी बाणी नू सुने, इस लई समझण लई समझे, इस लई सिखण लई सिखे, इस लई के मनन लई, जे तू गुरबाणी दी विचार नू छकदा जाएगा दुखां दा नाश हो जाएगा। आखो वाहिगुरु सुखां दा प्रकाश।

लेकिन सवाल यह है जे अगर हुक्मी दे हुक्म मनण का संबंध है तो मनण का संबंध फिर मन नाल है, फिर इस मन में भी समझना पड़ेगा। इस मन समझाने लिए मेरे गुरु ने मेरे ते कृपा की थी, कैसी अवपड़ी।

आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है। शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सूंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हुण इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक के शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नूं नहीं वेख सकता। कारण की है? मेरे मन का स्वभाव ही वही है, जिस मन नाल मैं वेखना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नूं मैं समझना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नाल मैं समझाना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। मैं अपनी अखां नाल अपनी अखां नूं नहीं वेख सकता। मेरी अखां विच पिया होया सुरमा अखां खुद नहीं वेख सकदियां। मैनूं अपनी अखां नूं वेखण वास्ते शीशे दी लोड़ है। मेरी अखां विच पए हुए सुरमे नूं वेखण वास्ते अखां नूं शीशे दी लोड़ है। जे मैं अखां वेखणियां ने शीशे दी लोड़ है, मेरिया अखां बिना शीशे तो अपनी अखां नूं वेख नहीं सकदियां। मेरिया अखां बिना शीशे तो अखां विच पए हुए सुरमे नूं नहीं वेख सकदियां। ते सच ए है कि मेरा मन अपने मन नूं नहीं समझ सकदा, मेरा मन मेरे मन नूं नहीं वेख सकदा। इस करके मैनूं अपने मन नूं वेखण लई गुरु दे मन दी लोड़ है। गुरु दा मन है, गुरु दा शब्द अख वाहिगुरु, गुरु दी आत्मा है, गुरु दा शब्द। मैनूं अपने मन नूं वेखण लई गुरु दे शब्द दी लोड़ है। इस करके मेरे मन नूं समझाउण लई मैनूं गुरु ने गुरु दा शब्द दित्ता है, सच्चे दा सच्चा शब्द दित्ता है, क्योंकि मन दा इक तत् है शब्द। मेरे गुरु ने मेरे ते अपार कृपा कीती, मेरे मन नूं सच्चे दा सच्चा शब्द दे दिता। जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नूं मिल गया, जदों मन दे अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, सच्चे दे सच्चे शब्द नाल मन रंगिया गया, जदों मन विच सच वस गया, दूसरे तत् भी बदल गए। आखो वाहिगुरु, मेरी देखनी भी बदल गई। पहलां तां मेरी देखनी विकारां वल सी, जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नूं मिल गया, हुण निरंकार नूं वेखण लग पई। विकारां नूं वेखण लई दुख सी, निरंकार नूं वेखण लई सुख है। आखो वाहिगुरु, जदों अखां विकार वेखदियां सी ते दुख सी, जदों ओही नेत्र निरंकार नूं वेखण लग पे ते सुख। पते पते चों, जलां चों, थलां चों, मही जल चों, जदों मन के अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, मेरा सुनना भी बदल गया। कच नहीं सुनदा हुण सच सुनदा। आखो वाहिगुरु, कच सुनन विच दुख सी, निंदिया सुनन विच दुख सी, चुगली सुनन विच दुख सी, हुण सच्चे दे सच्चा शब्द सुनन विच सुख है। जिस सुनी मन तन हरिया हुआ, आखो वाहिगुरु सुख है। हुण सुनो सत बाणी वाला बन गया। आखो वाहिगुरु, पहला तो बोलदा सी कूड, दुख सी कूड़ बोलन विच दुख सी, झूठ बोलन विच दुख सी, कबोल बोलन विच दुख सी। हुण तां सच्चे दा सच्चा शब्द बोलन लग पिया। पहला तरह तरह दे जीव दे चस्के दुख देंदे सी, रोग पैदा करदे सी, बहुत साधों दुख प्राप्त होवे। हुण तां सच्चे दा सच्चा रस पीण लग पिया, रसना राम रसायण माती। हुण तां सुंघना ही बदल गया, हर चरण कमल मकरंद लोभत वाला बन गया।
ਹੁਣ ਪਰਸਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਠੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਛੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੀ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਤੱਕ ਛੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

मुड़ के नंदन होएगा ही नहीं, तेरी पत रह जाएगी, दरगाहों पत रह जाएगी। अतो वाहिगुरु, जे तू मनण कर गया, तू तो टुटिया होया सी, तू तो पाटिया होया सी, आ मैं तेन जुगत दसा, तेरा मन भगती नाल सीता जाएगा। आखो वाहिगुरु, जे तेरा मन ही भगती नाल सीता जाए फिर तो दुखां का सवाल ही नहीं पैदा होंदा। आखो वाहिगुरु, फिर तो दुखां का सवाल नहीं, दुख उन्होंने नाल हन जिन्हों का मन भक्ति नाल नहीं सीता गया। दुखी ओने भटकते, ओने खपते, ओने खिचते, ओने जिन्हों का मन संसार नाल जुड़िया, निरंकार नाल नहीं।

सुख नानक संतन की सेवा चरण संत कोई पीवना भाग हुआ गुरु संत मिलाया प्रभ बनाशी कर में पाया गुरु संत मिलाया अखवाई।

थोड़ी नजर करे जय पंडित नदरी सतगुरु पाया जय बुद्ध जन्म परमया सतगुरु सतना सतगुरु देवदाता गुण सतना लोक सुभा सतगुरु जी सच पाया दिल में चौक पाया जिन सच चंदन पीला

0: दानी धानी तुम दानी तालर तुम फिरना तुम फिरना दानी दानी तुम दानी तर तुम
1: बागड़ी बिकते वाल बागड़ी तुम फिरना बागड़ी बिकते वाल बागड़ी तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना तुम फिरना

माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे, वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी है। होए होए। होर भी कई कुछ अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे सी, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजन। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ च नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे। बाबा जी का उधर लिव जदों हिंग नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेखिया साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा, कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा ना, ते तन गुरु गोबिंद सिंह

हड़ हड़ हसे लोक बिडाणा। कहंदे भी कोई मुसाफिर आया मजनू दे देश अंदर, ते जिथे लैली वसदी सी ना लैला, जिस इलाके च लैला रहंदी सी उस इलाके दा ए मुसाफिर है। लंघदा जांदा लैली दी दरगाह दे विचों लंघिया, ते लैली दी दरगाह दे उपर जिहड़ा कुत्ता सी ना, लैली दी दरगाह दे उपर बहन वाला जिहड़ा कुत्ता, ओ नाल हो तुरिया। जदों मजनू दे इलाके दे विच आया, मजनू ने वेख्या मेरी लैला दी दरगाह दा कुत्ता है, मेरी लैला दी दरगाह तो आया, मेरी लैला दे चरण चटन वाला कुत्ता आया, मेरी लैला नू नमस्कार करन वाला कुत्ता आया, पूछ मार मार के साफ करन वाला एक कुकर आया, सेवक आया। ते कहन लगा ए कुत्ता नहीं, ये ते महान है जिन्हें मेरी लैली दी सेवा की है, जिन्हें मेरी लैला दे चरणा नू चटिया, जिन्हें मेरी लैला दे मकबरे नू चटिया, दरगाह दे उपर बैठा रखवाली करदा, वो मेरे नाल महान है। ते कुत्ते नू वेख के ना पहचान करके कुत्ते दी, ते कुत्ते दे पैरां ते मथा टेकन लग पिया, कुत्ते दी पैरी पवै, कुत्ते दे पैरां ते पैण लग पिया, मथा टेकिया कुत्ते दे चरणा ते, अपने पैर अपना शीस लाया मजनू ने। लोग वेख के हस रहे ने भी ये मजनू की कर रहा, मुंह चुमदा कुत्ते दे पैर चुमदा, कुत्ते दी पूछल नू बार बार हाथ फेरदा, पलोसदा, मिलाप करदा, प्यार करदा, जफा पाउंदा। लोग हस रहे ने, पुछन लगा तुसी क्यों हसदे हो, तुसी क्यों हस रहे हो। कह लगे भी तू ते बड़ा मस्ताना हो गया, भी कुत्ते नू चट्टी जा रहे। कहन लगा मैं मस्ताना नहीं होया, मस्ताने तुसी हो गए हो, तुहानू नजर नहीं आ रहा मैं किनू चुम रहा, मैं किनू चट रहा, तुहानू नहीं नजर आउंदा, मैं ते ओनू चटदा पिया, मैं ते ओनू चुमदा पिया जो मेरे महबूबा दे देश चो आया, जो मेरी महबूबा दे दरगाह दे उपर अठे वक्त रहन वाला है। ए इस दे चरणा नू चुमदा, इस नू पलोसदा, इन्हे लैला दी दरगाह दे उपर बह बह पहरा दिता, ये महान है मेरे नालों। कहंदे ने एक बारी जेब नशा औरंगजेब दी लड़की, जिसनू कहा जांदा भाई इसनू शायरी करन दी बड़ी आदत सी, शेर लिखना, रस्ते च सिट जाना, लंघ जाना, कईयां ने चुक लेना, कईयां ने ना चुकना, कईयां नू मुल कदरों कीमत होनी, कईयां नू ना होनी। एक बार लंघी जा रही बाजार विचों शेर लिखिया, शेर धरती दे उपर सिट दिता, कागज धरती दे सिट दिता, पिछों एक फकीर आ रहा, उन्हें कागज चुकिया, कागज चुके शेर पढ़िया, बड़ा खूबसूरत शेर है, शेर बड़ा खूबसूरत है। पूछिया कौन है यह शेर अशारी करने वाली, कहन लगी ए बादशाह सलामत दी लड़की। कहन लगे फिर मैं उसनू जरूर मिलना। पहुंच गया राज महला अंदर, जाके कहन लगा भी मैं लड़की नू जरूर मिलना जिसने ए शेर लिखिया, बड़ा खूबसूरत शेर है। सिपाहियां ने पकड़ लिया, कहन लगे भी तू लड़की नू क्यों मिलना चाहना है, राजे दी लड़की नू तू मिलना चाहना है, बादशाह दी नू, हां जी मैं मिलना चाहना। कहंदे फिर सानू पुछ आण दो। लड़की नू जाके पुछिया, जेब निशान नू जाके पुछिया, कहन लगे तेनू कोई मिलन वास्ते आया। कहन लगे कौन है, कहंदे कोई सूफी संत है, भगवे कपड़िया वाला, कोई लिबास फकीरा वाला है, मिलन वास्ते आया। कहंदे जाके ओनू पुछो भी क्यों मिलना चाहंदा। जदों ओनू वापस जाके पुछिया, कहन लगे फकीरा उसका जवाब है बई तू क्यों मिलना चाहना। कहन लगा जाके फिर उसनू ए कहो भी मैं उसनू तां मिलना चाहना भी उसने शेर बड़ा खूबसूरत लिखिया है, जिसने एना सोहना शेर लिखिया वो आप किन्नी खूबसूरत होएगी, मैं उसके दर्शन करने चाहना। कहन लगे ए गल आके जदों इसनू दसी जेब निशान नू, ए कहन लगी जाओ फिर फकीर नू एक गल का जवाब दे दो बई मेरे दर्शन करने चाहना ना इसे शेर दे विचों दर्शन कर, तू मेरे शरीर दे दर्शन करना चाहना, शरीर ते मेरे दे दर्शन ना कर, क्योंकि शरीर मेरे दा ते कोई आद अंत ही नहीं, वजूद ही नहीं, ये ते है ही नहीं, ते मिट्टी दी मडोली है, इसने ते खत्म हो जाना। जे वो मेरे दर्शन करने चाहता ते मेरे दर्शन इसे शहर दे विचों होणगे, शहर ही मेरा स्वरूप है असली, क्योंकि मेरी आत्मा दी पुकार है, मेरे मन दी पुकार है। ये जाके संत नू गल दसी, संत बड़ा कायल होया, कहन लग्या वाकया
ਜਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਪਾਇਆ, ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਾ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਆ, ਕੁਦਰਤ ਪਹੋ ਭੁੱਖ ਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਇਹੀ ਉੱਚਰਦਾ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਛਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪੰਛੀ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਂ ਹੈ ਚਮਕ ਉੱਠੇ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।

आठ दम को छिपरो होयो लखीना बुलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीच कुल